ये ताली अति मेरा ये ताली अति मेरा ये हुकुम मिले न जमुरा ये ताली अति मेरा ये हुकुम मिले न जमुरा ये ताली अति मेरा ये हुकुम मिले न जमुरा ये ताली अति मेरा ये हुकुम मिले न जमुरा ये अंदर शीशिल मियाए उबिले न तुकरा।

मुराए अंदर सी शिलमी आए उभीले न सुकराए अंदर सी शिलमी आए उभीले न सुकराए के ताले चाहिए नसीबी जीतन जाए तालियन मजाए ताली